0: No, it's a mock him some.
1: Kungangala.
0: No, tell her soon.
1: Mingle, tell him to hear.
0: Let's say, Semakane Gimbal.
1: And I'm not just you put your Latin in.
0: Let's say, Tazisun bet.
1: Oh, Latin.
0: Let's say, Law. Listen, and Chichi Shube, Payula do see the Sunset Dikranga so pure him not.
1: Like in a tumble, that drink is so jumpy. Chiran is so silly. Chiran is. Kira, この人だ。でに、たらしびゆさるちんだしびでに、きべるんでせんと、蹴るたん、ことさもろでいいんかな。ねせろ。あ、でだちゃちでに、きべぐしに、うちてんとちらだ。そうしびでに、この人さもろだ。あ、レモンロデンのうすせんちょうなんじょ、うすらでに、とじゃ、かまなんじゅうじょ、ちゃちゅうしえいんかな。ねせろ。でだちゃちからだれぎすんせてたちゃちゃしえば、
0: 老师是孙雪的，就是那拍戏没什么话。那现在先别的业务了，也干了。陆子南没那单穷多了，光我们是兄弟。那是。那真的给他，故事都讲了。那是人家我。那我给他。那是。那。 Lui Simo Kamsam Lui
2: Sibanan
0: Kamsam
2: Bole No Kamsam Manja Yuri Gala Gusu Setan in Shala, the Gadu Sindhi Chetu.
0: Listen, Lo, Sell her soon.
2: What is he, Yulgala?
0: Listen, Sibakan Gimbal.
2: Makinchi, Bowie Rongin, take you.
0: Listen, Lo. Listen, and Chichi Shibe, Payula Dubi Sibi Sunsi, the Gugila is so Payina.
2: Payula Dubi, Lucia, Hajan, Yamuti, Tango, Tanjong, Lungi, Nindin, the Gunti, Uti, Lesu, Yong Tang, Takbar to Resapu, the Denti, Sotom again, Tendula, Jito, now again, Yangan Tola, and Genti Dola, Ganga Dola Jet, and Shabati Dunanga, Tempasan, like Jito, now again, Tawatashi, La Jela, Pune, Nintar Rishin, Tokan Tobang. Nemi chicken, the dinka young and dashing pure. Nayan punyan lizenti, Terra yakto yakzi, you are gentent like you told you now a tongue, gambasan like you should, but you didn't know where the stuff. Pubu lizenti took a lizzi, you are my set. Chani yube, dachu tujin, tongue, get in tujin, kanga kunti tongue, gaga toto yung way. Does she mean to ying tagon a shooting girl?
0: Yes, sir.
2: 前年打给龙丁山多出手的冲到拉档，我个家在孙南边去拉，我个出生地孙南到我了，我个你东基本上吃的拉到我吃的拉，他是阿家的地拉，所以做农委，龙丁山多生意用汤，初一的归农修根生意用，初一过根生意用，借了半年，最大都托什么都不汤，年没吃的。 能在西北塘去团住吧，前年月白大吉推进塘，接顿推进你看看空气用完，这些民众你有哪些规定？那是
0: 了。
2: 今天就拉塘，跟巴山拉你养推进你，你几欧呢？看看空气养用完，这些民众养养水就应该了。那是托起
0: 别过能的，光讲嘛学不那种水平。那是过去了，那托起，那是点讲过。那，那现在我们从上边个能吹空运气，对不？就是李先生说能看看，查找成名了邂逅好运气，水牛空的李先生还将去搞不有不他。李先生做用不过来看是苏先生空的呀，托起能学有他。模特用个能吹，声音丑不成名了，学莲花水牛空的伊呢，嗯嗯，他是重开。 四千五元香港都预备，可能去泡沫。嗯，加上普吉兰的最备空气连着，听见了三千松懈的票价，那么错，大家提前准备用百米的收银，所能下。老母推巴塞拉，你才能收难，看看三百四百铁东方那只听那种收银。我来三百看上。
3: 这里这个巴塞拉的。
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད अने लुंगी नियंत्रण दिखो की लेजी लेसो उठी कमल लोगों अने आ चाल निरे की अने दाजी की पीजी आ नियंत्रण दिखो की टोप योंग के जो जो ये अने इतना चौक से अने पांडु पांडु ना में पंद्रह अने दिंजा ला ये सो कमान में जी जी शुभ ही ला
0: लेसे ला
1: नो तो जे दीदा चौक से अने छोटे तुझे जी शुभ चौक जी
0: Nese, wangzi langa tsamzhi dhul dhuzhi naro na jolo zimbo gu shu xia la.
1: Hello, jena, jena le, tanda gondo shu nangi ge, ane, saji chola zo nangi ge, ane, shikzi ge, ane, sendo yongda, ane, tanda gondo shu nangi ge, logi ge, ane, sona tsaji ge la zo nangi, ane, sendo yongkora, ane, jinshe di tine, ane, kona, jinshi tena, ane, jinshi li da, ane,
0: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད
3: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད ཁོང ལ བོ ཡིན ལ དང ཁོང ནག ཇུར ཁང དོ དོ ནང དོ ནང ཤེ ཡིན དེན དེང གི གུར ལ དེ ནམ ནི གི ཉི མ རྒྱབ ལ དེ ཁོ རྒྱ དེ སོན དེ ཤི ལ དེ བོ ཡིན ཨ ཆེ
0: ནེ སེ ལ
3: དེན ཨ ཁི ཤིང བན ལ བོ ཡིན དེ ཁོ ཨོ བ དེ ཤེ ཤེ ཡིན ནེ
0: སེ
3: ད ཅི ལུ དང ག ལ
0: ནོ སོ ཤེ ཧན ཆེ ཅི ནའི ན
3: དེན དེ ལ དང ཉམ སང ཅི
0: ནེ སེ ཐོམ བཅི ཨིས དང རོ ན སོན དོ གི ལ
3: ན ན